राम दासे हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना उन दे आवे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री

वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु.

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा कोना सिंह हर का नाम तै नाल पछानू जय महाभयान तप्त बहुकाम तै हर के नाम की तुम उपर शाम जह त्रिखा मंदुज आकरख तै नानक हर हर अमृत बरख भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम दरे जन कोट को

अष्टपदी जापता ज्ञान सब ध्यान कर शास्त्र सिमरत बखयान जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया।

ब्रह्मज्ञानी का यह गुणाव नानक जो पाव का सह स्वभाव। ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैला लागे जला। ब्रह्मज्ञानी के मानो है प्रकाश जैसे तारु ब्रह आकाश। ब्रह्मज्ञानी के मित्र सतर समान। ब्रह्मज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने सबते नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन भय जन नानक जन प्रभ आप करे। ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया। ब्रह्म ज्ञानी ते कश बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी का ना ही तंधा। ब्रह्म ज्ञान ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कहो सोफला। ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक। ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग। ब्रह्म ज्ञानी का बस ब्रह्म संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार। ब्रह्म ज्ञानी का राम प्रवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत। ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद। ब्रह्म ज्ञानी का कार सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता। ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता।

ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब सब पर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक उर ताराय ज्वंतर नाम सरम पिख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक व परस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पार्थ रूप न पेख नेत्र साध की टहल संसंग हेत करना सुने काहू की निंदा सबते जाने आप इसको मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हर मन की वासना मन ते टरा इंद्री जित पंच दोखते रहत नान कोट बधे को ऐसा अपरस वैसनो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न मिशन की माया ते हुए पिन कर्म कर तो बहने कर्म तिस वैसनो का निर्मल धर्म का उफल की इच्छा नहीं बादशाह केवल भगत कीर्तन संग रक्ष है मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर हो कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तुस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल कर नित नीत मंत्र अर्प बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में शुद्ध है राम नाम सार रस पीवा उस पंडित काय उपदेह जग

नानक स्पंडत को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहुमर नामे जपे कहु नाम जो जो जपे तिसकी गत होए सा संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मुगत पात्र को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कतना पाइये धर्म नानक दस मिलाए जिस

आप्रभसवे जोग जगीनो स्वप्न रंग सप्ते दूर सबहू का संग बुज देख करे विवेक आपे एक आपे अनेक मर रमन से आवे ना जाए नानक सदी रह समाये आप देश समझे आप आपे रजया सबके साथ आप किनो अपन विस्तार सब कह सुसगाओ करने हार सुस्ते भिन्न कह हो किशोय थान तरंतर एक सोए अपने जल धाव करने हार कौत करे रंग आबार मन में आ मन अपने माहे नानक ईमन कह ना जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद गना बख्यानी सच सच सच बकीना कोट मदे गिर बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी खटखट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन पर सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार राष्ट्रपति संत के दुख ने आर जा घटे संत के दुख ने जमते नहीं छुटे संत के दुख ने सुख सब जाए

एको सोयोद बोध रभयारूप रंग पहे प्रकाश साधक संग रचर चना बनी गलता हरियन कबार नानक बलिहारी सलोक साधना चाल बिन भजन विखिया सगरी शार हर हर नाम कमावना नानके धन सार अष्टपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार उर अवर पाप समीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण गान सो प्रभ सम्राद्रण कर गह हो नाम अलवत ए तन संचो भगवान संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुण उड़तावे सो तन हर सेवा ते पामे जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे परि करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुक पावी रोग ना जाए रोग मिटे हर आफत लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जब नानक दुर्गे परवान मन प्रबुद्ध हर कह राय दय दस्तावते आवे ठाए ताको बिघन ना लागे गोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाहो सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन से पूर्ण हुए आस भगत पाया तम मरगास तत कर जाए बसे बनासी कवना ने काटी जम फांसी तद विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा गमन मिटे प्रभ से बाप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म गाओ उदार हर हर सिमर सिमर प्राण आधार अनुग पावना छुटन हरे सिमरत सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मंचत नानक फल पाए संगना चाल तेरे तना तू क्या लपटामे मूर्ख मना सुतमीत कुटम अर बनता अंत्य कह हो तुम कमन सनाता रा रंग माया विस्तार अंत्य कह हो कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंदी तस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुरकी मातु ले याने भगत बना ब डूबे सयाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिग जाहे आप जब अबरा नाम जपावो सुंद गैत रैत गत पावो सार पुत सतर सार पूसा तरको नाओ सह सुभाए नान गुण गाओ गुण गाव तेरे उतर समैल बिन जाए होमे बिग फैल हुए चंद बसे सुख नार सास ग्रासर नाम संभाल शाड सियान में सगली मना सास संग पामे सच तना हर पूंजी संज करो व्यवहार यहां सुख दर गै जयकार सर्व निरंतर एको देखो नानक जाके मस्तक लेख एको जापे को साल आहे एक सिमर एको मन आहे एक के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर्ण रहो प्रभ्याप अनक विस्तार एक दे एक रात प्राशद गए मंत्र मंत्र अंतर एक पर राता गुरप्रसाद नानक जाता सलोक फिरत प्रभ आया परया ताऊ शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए।

अनाथनाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा कर्त प्रतपालाथ पुर कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व कुंट मुक्त मोख पाए एक निमख हरके गुण गायन कराज भोग बढ़ियाई हरके राम की कथा मन पाई वो भोजर का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भरी सो करनी शोभा तन मंदिर दे बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभु देहो निवास सर्व सुख नानक प्रकाश सरोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी।

चंद्रमा है चार गुण दे दसे समा है दसे भिन्न कोठाओं कर प्रसाद नानक सुख भाव वेद प्राण सिमृत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभु की सबको बोले अब अडोला कबहू डोला सर्वकला कर खेला खेल मोलना पाइये गुणे अमोल सर्वजोत में जाकी जोत हार्यो स्वामी ओत पोत गुरुप्रसाद ब्रह्म का नास नानक दिन में विश्वास संजना का बेखन सब ब्राह्मण संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सुब भजन सर्व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकिए रहत सद भजन साधु सब कहत जो जो है सोई सुख माने कर्म करामन हार प्रभ जाने अंदर बसे बाहर भी ही नानक दर्शन देख समोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात तिस भावता करे विस्तार तिस भावता एक अंकार अनकला लखी न जय जिस भावत सिलाये मिलाये कवन निकट कवन कहिए दूरापे आप भरपूर अंतर्गत साप जनाए नानत जना बुझाए सरभूता परतारा सर्वनैना पेखण हारा

तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम शनान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मध्य सकल ते उदास सुंदर चतुर्दत का बेदा समदर्शी एक दृष्टिताय फल तिस जन कै मुख परे गुरु नानक नाम वचन मन सुने यवन दान जपे मन कोय सब जुग में ताकी कत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मताद केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट पराध सास संग मिटे संत कृपा दे जमते छुटै जाके मस्तक करम ब्रह पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत ते जन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवार दुलाव दे तत्काल उदारे निर्मल सुभा मृत ताकी बानी।

कुरान थेतुआना जोगी जाने रुतमावना कोई जा करता सृष्टि को साजे आप जाने सोई क्यों करे आखा क्यों सलाहे क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखण सबको आखे एक दो एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डे नाही किता जाका होवै नानक देखो आपो जाने गे गया ना सो है पाताल पाताल लख आगासा आगास ओढ़ के ओढ़ गोपाल थके वेद कह निकवात सह सह अठारह कहन कते बास रोग तात लेखा हो त लिखी है लेखा हो विनाश नानक वड्डा आखिए आप जाने आप सलाहे सलाहे ते सुरत ना पाई

लाख लख गेड़ाया किया एक नाम जगदीश एत राह पद पवनिया चढ़िया होया कीस सुन गल्लाया काश की किटाया रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस।

तथा सुरतमात्मान बौद्ध तथा करिय सुरा सदा के शोध कर्मखंड के बाणी जोर तिथ होर न कोई होर तिथ जोत महाबल सूर तिन मह राम रहा भरपूर।

अंगंग उघहर्ता परम परम परमेश्वर प्रोज पालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग छेदी अभेदी नाम काम संसद पराधि समस्त सतांग तेरा जोर चाचरी छंद जलया थलया पीता व्या प्रभु है जू है देशा पेशा पुजंग प्रिया छंद अगाधे अबाधे आनंद स्वरूप नम स्रम संसती निधान नम स्वंग नाथ नम स्वंग परमाथ नम स्वंग अगंजे नम स्वंग पंजे।

कृपालिंग स्वरूप गोकर्म प्रणासे सदा सर्वदा हृदय सिद्धि निवासी।

चतुर चक्र वर्ते चतुर चक्र परते चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मानिय चतुर चक्र दानिय चाचरी संत न सत्र न मित्र।

क्या के सर्वं कलिमे के परमं फहिमे के अकल अलामे के साहेब कलामे के सुनल वजवा तमाम दुआ में सुल सलाम सलीकुदम दामे गनीबल सुख गरीबल परस्ता है।

रूपेण सम सदोपराजय सदा सर्वसाध्याय समस्तराम सदय बुरा काम है निर्वास्वरूप गाधनूपे अंगाद रूपे अनाश रूपे अनंगी अनाम त्रिभंगी त्रिकाम त्रिवर्ग त्रिवाजे गंधे अगाध्य सुमसरूपा के सुसर्वानुराग त्रिभक्त स्वरूप छिद्य छूत नरक प्रणास प्रतिल प्रवास है

के जय हरदुरा के हजरा दुरा में सुसरा में समस्त कलाम के साहिब दिमाग के सुनल चिराग कामल करे मैं करो के राज करे मैं के करम के साहिब दिमाग के सुनल चिराग के कामल करे मैं के राज करे मैं करो जी दैन के राज करे दैन करीमल कुमार के सुनल जमाल है गनी बल के राजा गरी बल निवाज हरी फिर खाना है रासुर बिकाना कलंक बरणास सुमसल निवास गनी महर जाय कर ही मह

शांत रूपे नमो परम तंदगा तंतक्ष रूपे नमो जो जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्यान नमो ज्योत ज्योदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पान नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे

पंगे स्वरूपे अनंगे अनामत्र पंगे दृकाले अनंगे अकामे कचरे छंद अजय अलय अभय अभय अपो अजो अनास काश गंजा पंजा लख पख काल दयाल लेख भेख नाम काम घाटा नाथ ब्रह्मथ अजो नियमोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे कर्मग परभंग गंजे लेखे भुजंग प्रिया छंद नमस्त प्रणाम समस्त प्रणास गंजल नाम समस्त निवास निकाम बबुद्ध समस्त स्वरूपे कुकर्म प्रणास धर्म बबुद्ध सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल करिंदा समस्त निवासी अदाय बबुद्ध गदाय गनी में हरियं करियं करिमल रहीम चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते

प्रसाद स्वयं श्रावक सद समूह सिद्धान के देख प्रयोग कर दो जति के सूर सुरार धन शुद्ध सुधा देख संत समूह अनेक मति के सारे देखो देख रहे मत को न देखो प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा उत करति बने करति के मातम तंग जर जर संग अनुपव तंग सुरंग सुवारी कोट तुरंग कुरंग सकुद पौन के गुण को जात निवारे भारी पदन के भू पली विदने अवशिष्ट न जात बिचारे ते पै तो कहाँ पै भू पतंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब दे दिशा को बास ढोल मृदंग नकारे गूंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसती अजराज अजारे भूत पिख भवान के पुपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पर श्री भगवान पर जब नंद कुंद के धाम सुधारे तीर्थ नाम दया दंदाम सुसंध्या मने मने कवि सिख है वेद पुराण के देव कुरान जमीन जमान सुबान के पिख है पौन हार जती अतार सब सुविचार हजार के देख है श्री भगवान पजे बन पुपत एक रति बने के न लेख है सुद सिपा दुरंत सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंखा लिए ना लेंगे तोर अरेर मरोर मुआसन मातम दंगन मान मलाएंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिंद्याग जहां निधान चलेंगे वीर पार बटे बरियार विचार सार की तार पचैया तोर देश मिलिंद मुआसन मात ज्ञान के मान मलैया गाड़ी गड़ान के तोड़न हर सो बात नहीं चल तार लवैया साहब श्री सबको श्री नाय चाच गण एक सो एक दवैया दानम देव फनंदर सात्र

सुंदर ही है, पूर्ण हो हमारी आशा तुर भजन की रह प्यासा तुम्हें तो छाड़ को अपना त्याओ जो बरचाओ सो तुम ते पाओ सेव से का मारे तारिया चुन चुन सतरा मारे मारिया आपाद्य मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया हो जो सदा हमारे पच्छा श्रिया।

तारा काल पाए कर विष्णु प्रकाश था सकल काल का किया तमा सा जवन काल जोगी सब की हो भेद राय ब्रह्मा ज्योति हो जवन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है तय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव ध्यान जय चन बजा जो आदन ते कवतारा सोय गुरु समझो हमारा नमस्कार ते सिखो हमारे सुल पर जज ने आप सुवारी सेवकन को सावकन सुख दियो सुदरन को परम अमृत कियो कट कट के अंदर की जान पर भरे की पीर बचाने चीटी ते कुंचरे सोला सब पर कृपा दुष्कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी के पीर बचाने कट कट के पट पट की जाना जब कर करा कर तारा पर जत्र तब दे अपारा जब आकर कर तो कमो तुम मैं मिलते दे तर सब हूँ

ठा शीघ्री सिद्ध खाय चंबवाज गा श्रो सी अंबा वरचा मेरी तुम करो सिख बार सुख सुनो दुष्ट जित उठो दुपाता सुग्र मिले करो रण काता जय तो तब सरणी पर तिन कह दुष दुख था मरा पुरख जवन पग पर त्यारे तिन कह तुम संकट सब डारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निक न आए हैं रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट हर ठरंत काला कृपा दृतन जाय न हरो ताके ताप तन कमय हरो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हो दुष्ट छा छवा सके ना कोई

सहाय। दुष्ट रोग ते लेहो बचाय। कृपा करे हम पर जगमाता ग्रंथ करा। पूर्ण सवराता केवल सकल देखो हरता दुर्दोकन कौचा करता श्रेय तो जप।

बाणी कह नानक सदाकाल होए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी त कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे।

कीर्तनिया कीर्तन च इन्ना गलतान हो जाए कि उहदे कीर्तन दी शक्ति उहदे अंदर दे विकारां नूं भख जाए, चर जाए, खा जाए, खत्म कर जाए। बाणी दे जपण वाला इदां जपे कि उहदे अंदर दे विकारां नूं बाणी दी ताकत खा जाए। कथा दे करन वाला इन्ना प्रेम च भिज के गुरु आश्रित हो के जपे कथे कि कथन करद्या करद्या कथा की ताकत उहदे विकारां नूं पखण कर जाए। मर कहिंदे ता सिद्ध होई, ता जिहड़ी सिद्धि हुंदी है फिर आत्म सिद्धि, भाव मन की जिहड़ी उल्टी होवे मत बदला हो, समा नहीं क्योंकि पंगतियां विस्थार मांगनियां ने। सुरती सिद्धि हुंदी है फिर वाहिगुरु वालों। सिद्धि ते बुद्ध पाई, फिर जदों सुरत वाहिगुरु वालों हुंदी है वो सिद्धि सुरत होण करके जा आत्म विसैणी बुद्धि रूप सिद्धि होण करके विवेक बुद्धि दी दात प्राप्त हुंदी। जिहड़ी ए बुद्धि है साडी जिहड़ी हुण है साडे कोल, इहदे नाल ना वाहिगुरु नूं जाणिया जा सकदा, ना अनुभव कीता जा सकदा, ना इहदी पकड़ च आउंदा ही है। जिस बुद्धि नाल उहदा अनुभव भी हुंदा ना, उह भी वाहिगुरु ही दिंदे आ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ताही बार बार कहा महाराज जी ने, मैं दीजा बुद्ध विवेका, विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई। उस तो पहले अनुभव नहीं हुंदा, ताही असी डेली पढ़ते हाँ, सामै जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सामै चानण होए। विसारियां च वाहिगुरु की जोत है, वह तो बड़ी वड्डी चीज है। सानू सारिआं नूं महाराज जी ने कहा, तुसीं मेरे पुत्तों, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तों, माता साहिब कौर दे बच्चे हो। सानू तां महाराज जी दे बच्चिआं च महाराज दे बच्चे नज़र नहीं आउंदे। ये टकसाली, ये अखंड कीर्तनी, ये फलाना, ये फलाना, कदे नज़र मारी है भी महाराज जी ने एक नूं कीर्तन दी दात दित्ती, एक नूं कथा दी दित्ती, एक नूं झाड़ू लाण दी भी दित्ती है, एक नूं लंगर पकाउण दी भी दित्ती है। दातां ने वखरियां वखरियां, जिवें जिवें किसे दा भला, एक दा झाड़ू मारदे ही भला कर देना, एक दा गाउंदिआं ही भला कर देना, एक दा जस करदे ही भला कर देना। महाराज दे हत्थ है ना, किहदा किद्दां भला करना। जे सुरत महाराज जी दे प्रेम च भिज्जी होएगी, फिर महाराज जी दे बच्चे, माता साहिब कौर दे बच्चे नजर आउणगे। ते जे सुरत च टिका नहीं, बख्शिश नहीं, फिर वखरियां वखरियां संप्रदावां वखरेवा नजर आएगा अपने अंदर भी। सो चलो, महाराज जी कहिंदे अनुभव उदों ही हुंदा जदों बख्शे जाईदा। विवेक बुद्ध सतगुरु जी बख्श दिंदे है।

क्या रास है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। रतन लुकाया लुकै नाही, जे को रखै लुकाई। कहिंदे फिर रतन ऐसा जिन्हों मिल जांदा, लुकाउण दी कोशिश भी करे लुका के रख नहीं सकदा। क्यों? मालक अपने प्यारियां नूं बड़ियाई दिंदा।

सब कुछ तेरा ही है, तुसी अंतरजामी हो, तुसी सब दे हो, सब थोड़े ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु।

जी दर्शन प्यासी दिन सरात चित्व अंधनीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संगमीत।

समाना जिसकी वत सोई प्रभ जाने जिसनु दे सो पाए वस्त अनूप अत अगम अगोचर गुरपुरा अलख लखाए जिन ए चाखी सोई जाने गूंगे की मिठियाई रतन लुकाया लुकै नाही जे को रखे लुकाई सब किश तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभ सोई जिसनु दात करे सो पाए जन नानक अवर न कोई सब किश तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभ सोई

सगले कूड़ कमावे महला पहला। जा तू वड्डा सब वड्याइया चंगा चंगा होई, जा तू सच्चा ता सब कहो सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात, हुकम साज हुकमे विच रखे नानक सच्चाई आप पवड़े। सतगुर सेव ने संग भरम चुकाई है, सतगुर आखे कार सुकार कमाइए। सतगुर होए दयाल ता नाम त्याइए, लाह भगत सो सार गुरु पाइए। मर्म कूड़ गवार कूड़ कमाइए, सच्चे दे दर जाए सच चमाइए। सच्चे अंदर मैर सच बुलाइए, नानक सच सदा सचार सच समाइए। सुरक महला पहला। कल का तीरा देखा साई, धर्म पंख कर उड़ रया। कूड़ा मावस सच चंद्रमा दिसै नाहीं कह चढ़िया।

मने अंदर करी पे काख कराई जेवड़ साहेब तेवड़ दाते दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिसे ऊपर सच ना वड़े आई महला दूजा आखने आखना रजिया सुनन ना रजे कान

लदुजा नानक परख आपको ता पारख जान रोग दारू तो वह बुझता वैद सुजान वाटन करी मामला जाने मेहमान मूल जान गल्ला करे हाँ लाए हान लब न चलई सच रह सुविष्ट पर बाण सर संदे आगास को पहुंचे बाण अगे ओ आगम है वाह दड़ जान पौड़ी नारी प्रग प्यार प्रेम सिगारिया करन भगत दिन रात नर निवारिया मेला मंज निवास शब्द सुवारिया सच कह नि अरदास से विचारिया सोन खसम पास हुकम सुधारिया सखी कह नि अरदास मनो प्यारिया बिरना में त्रिग वास पेट सो जी ब्या सब सुवारी आस अमृत पी ब्या श्लोक महला पहला मारू भी ना तृप्तिया अग्नि लय न भुख राजा राज ना तृप्तिया सायर भरे के सुख नानक सचे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा ने फलंग तस जन्म स जावट ब्रह्मना बिंद तय सागरंग संसार गुरु प्रसाद तरके करण करण समरथ है को नानक विचार कारण करते बस है दिन कल रखी तार पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसया सचा खसम कलाण कमल विगसया खसम पूरा पाए मनोरहसया दुश्मन कडे मार सज्जन सरसया सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा सदविचार काल विदस्या ढाडी कथ अकाथ शब्द सुवारिया नान गुण गह रास हरदियो मिले प्यारिया श्लोक महला पहला खत्यो जमे खते करन ता खत्या विच पाहे धोते मूल न उतरे जिस धोन पाहे नान बख्शे बख्शे नाहे ता पाही पाहे महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगिया सुख सुख दुख दो दर कपड़े पैरे जाए मनुख जिथे बोलन हारिये तिथे चंगे चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर भालिया सचे पुरखा लख सिर जदय निहालिया उजड़ भुले रा गुरु वेखा लिया सगुर सचे वा सच संभालिया पाया रतन करा दीवा बालिया

पदियत मोलैन पड़ा सा पानी देख सगाही भेडा वंग सिर खुआन परियन हथ सुही माओ पियो गिरत गुआन टब्बर रोवन ताही ओ न पिंड न पतल किरिया ना दीवा मुए किता हू पाही

पयाकार जो सो है गुरु संबंध नदी सिख सिखी नत जतुड़ियाई नानक जिसर गुदे नावना सत चट सिरछा सिरछाई महला दूजा के पाला के करे सूरज के ही रात चंदन रा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस सब कुछ होए नानक ता पत जानिए जा पत रखे सोए पौड़ी तुद सचे सुभान सदा कलाणिया तू सचा दीवान होर आमन जानिया सच दे मंगे दान सत दे आ सच तेरा फरमान सब

पाय राह शर्म सुरत द्वय ससुर पाय करणी कामण कर्म लय सहा संजोग व्याभ्य जोग सत्संद नानक जोग गौड़ी महला पहला पौने पाणी अग्नि का मेल चंचल चपर बुद्ध का खेल नौ दरवाजे दसवां द्वार बुजुर्ग ज्ञानी विचार कथता भक्ता सुनता सोई आ बिचार सो ज्ञानी होई राहो।

पाड़ पाड़ पंडित बाद बखाने पितरों दी वसना जाने हो न बुआ मेरी मुई बलाए हो न बुआ जोरिया समाये को नान गुरु ब्रह्म दिखाया मरता जाता नजर ना आया गुड़ महला पहला दखनी सुन सुन बुझे मन नाओ तक सब लिहरे जाओ आप लाए ठोर न ठाओ तुम समझावे मेल मिलाओ ना मिले चला मैं नाल बिन नावे बाधे सब काल रहाओ खेती बंद नावे की ओट पाप पन बीज की पोट काम करो जी में चोट नाम विसार चले मन खोट सच गुर की साची सीख तन मन शीतल साच परीख जल पुराण रस कमल परीख सब रते मिठे रस ईख हुकम संजोगे गढ़ दस द्वार पंच वसै मिल ज्योतिया पार आप तो लय आपे बणजार नानक नाम सुवारण हार गौड़ी महला पहला जात जाय कहते आवे कै बजे कै दस समावे क्यों बात दे क्यों मुक्ति पावे क्यों अविनाशी सह समावे नाम हृदय अमृत मुख नाभ नर हर नाम नर हर ने काम रहाओ सहजे आवे सहज जाए मंत्र विजय मन माहे समाये गुरुमुख मुक्त बंद न पाए सद विचार छुटाए हर नाये तरव पंखी भाव निष्भास सुख दुखिया मनो मोह विनाश

कहराओ अग्नि पानी बोला पड़वाओ जे वा इंद्रिय कह स्वाओ दित्व करी नाई पाओ पाओ अमर तपाय राओ सन्मर फेर मरना होए।

पाए। मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर सरना राव सग मृत दुदा भागे कमल बेगास मन हर प्रभु लागे। जीवित मरे मारस आगे सग मिले सत्संजा मैं सोचा गुरु की पौड़ी उचो उचा कर मिले जम का पाओ मुचा गुर मिले मेरे अंक समाया कर कृपा कर मैल दिखाया नानको में मार मिलाया। गौड़ी महला पहला किरत पया न मिटे कोए क्या जान क्या गए होए जो तुझ पाना सोई हुआ अवर न करने वाला दुआ।

विश्वराय नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुरु के शब्द पहचाना रहो जिस नर राम हृदय रास सह सवाय मिले सा जाहे सवारे सांझ ब्याल

सीतो सीता महिमा माहे। ताके रूप न कथने जाहे, ना होहे मरे न ठगे जाहे। जिनके राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोह करे आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेख अंदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भांड।

आदेश सह आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग कवेश एक दूजी पाओ लख होहे लख होवे लख वीस लख लख गड़ा की एक नाम जगदीश ए तराहे पद पावड़िया चढ़ी इक्कीस सुन गलना आकाश की ढाई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर च पहना जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टा संसार जिस हाथ जोर कर वेख्या सोए नानक उत्तम नीच ना कोय राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल

मन लागा दुख दर्द परम तां कह पागा हर तन पुभ पारी पूरा जिसे नमाजे सो जन सूरा रहा जा कह पै कर पाल गुसाही से जन लागे गुर की पाही सुख सहज शांत आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संखाटी को नानक प्रभु अवदा काटी गौड़ी महला पंजवा हार सिमरत सब मिटे कलेस चरण कमल मन मैं परवेश उचरो राम नाम लखबारी अमृत रस पी बहु प्रभु प्यारी रहा सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद मात खोहे साध के सांग कल विख सब तोहे कर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक दीजे साध वल्लह गौड़ी महला पंजवा जिसका दीह पहने खाहे तिसको आलस क्यों बने माहे खासम पसारी आन कम लागे कौड़ी बदले रतम त्यागे रहा राहु त्याग लागतियन लोभा दास सलाम करत कत लोभा अमृत रस पी वै खान पान जस दिए तसे न जाने सुआन का नानक हम लून हरामी बख्श लिहो प्रभु अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन मह नदान सगल तीर्थ मंजल स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाही कोट जन्म की मैल है जाई रहा हर की कथा हृदय में बसाही मन बात सगले फल पाई जीवन मरण जन्म प्रवाहन जाके हृदय बसे भगवान कहो नानक सोही जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु धूरे।

साकत की आसी हरित जो कुछ करे सगल बपरीत रहम सगल बपरीत जो प्राण जन मन तन धरियाम सोई ठाकर मनो उसारियाम बदे पकार लिखे बोकागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाहे बंधन काट तरे हर नाहे रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुक्त पद दीत ऐसा मीत है करो सबको हे जाते व्यर्था कोय न होए रहा अपने स्वाय हृदय लरिया दुख दर्द रोग सगल बधरिया रसना की दी बोलत राम पूर्ण होवे सगले काम आनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिघन है खन माहे हर हर कथा सा संग सुनाहे पीवत राम राम रस अमृत गुण जास जप हर सरन मिटी गुण दास रहा सर्व कल्याण सुख सहजन दान जाके हृदय बसे भगवान औखद मंत्र तत् सब सार करने हर हृदय में धार तज सब परम भजियो पर ब्रह्म को नानक अटल धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा भेटे गुर सोही तत् वल रोग न व्यापे कोही राम रमण तरन है सग पै सागर सरन सूर फाहे जमकागर राम सतगुर मंत्र दियो हर नाम अवसर पूर्ण पै काम जाप तप साजो पूरी बड़ी आही गुर कृपास हर पै सुहाई मान मोख है गुर परम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा विखे राज ते हमला पारी दुख लागे राम

आनंद तिना संग उन समसर अवरन दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परै सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ताकै चरण परोता जीवा जन कै संग निहाला भगतन।

तब निर्मल जोगी थिए। परम जराए चराई विभूता, पंथ एक कर पेख्या। सहज सूख सो किन्ही भुगता, जो ठाकुर मस्तक लेख्या। जय पो नाही तहां आसन बाद्यो, सिंगी अनहत बानी। तत विचार डंडा कर राख्यो, जोगत नाम मन पानी। ऐसा जोगी बड़भागी भेटै, माया के बंधन काटै। सेवा पूज करो तिस मूरत की, नानक तिस पग चाटै। गौड़ी महला पजवा अनूप पदार्थ, नाम सुनो सगल त्याय ले मीता। हर औखद जाको गुरदिया, ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो तह तन ते, गुर शब्द दीपक परगासा। भ्रम की जाली ताकी काटी, जाको साध संगत विश्वासा। तारिले भवजल तारू बिखड़ा, बोहित साधु संगा। पूर्ण होई मन की आसा, गुर भेट्यो हर रंगा। नाम खजाना भगती पाया, मन तन तृप्त अगाए। नानक हर जीव ताको देवै, जाको हुकम मनाए। गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरै, मोहनाथ शरण प्रभ तोरी। अंधकूप में हाथ दे राखो, कछु सियानब उक्त न मोरी। रहाओ कनक रावण सब किश तुम ही, तुम समरथ नाही अनहोरी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, से सेवक जिन भाग मथोरी। अपने सेवक संग तुम प्रभ राते, ऊत पूत भगतन संग जोरी। प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्ट होए चंद चकोरी। राम संत मैं भेद किछ नाही, एक जन कही मैं लाख करोरी। जाके हिये प्रगट प्रभ हुआ, अंदन कीर्तन रसन रमोरी। तुम समरथ अपार अतुचे, सुख दाते प्रभ प्राण अधोरी। नानक को प्रभ कीजे कृपा, उन संतन के संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवा तुम हर सेती राते संत हो, निभाए लियो मोको पुरख बिदाते। ओढ़ पचावो दाते रहाओ, तुमरा मर्म तुम ही जान्या। तुम पूरन पुरख बिदाते, राखो सरन अनाथ दीन को। करो हमारी गाते, तरण सागर बोहित चरण तुम्हारे। तुम जानो अपनी पाते, कर कृपा जिस राखो संगे। ते ते पार पराते, ईत ऊत प्रभ तुम समरथा। सब किश तुमरे हाथे, ऐसा निदान देहो मोको। हर जन चले हमारे साथे, निर्गुणी आरे को गुण कीजे। हर नाम मेरा मन जापै, शांत प्रसाद नानक हर भेटे। मन तन शीतल त्रापै, गौड़ी महला पंजवा। सहज समायो देव मोको, सतगुर पै मोको अजर गुरहे दिखायो। मोको सतगुर पै दयाल देव रहाओ, काट जेवरी कियो दासरो। संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी। मोको अचरज गुरे दिखायो, पयो प्रगास सर्व उजियारा। गुर ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्त्या। अनपय ठहरायो, मान आज्ञा सर्व सुख पाए। दुखों ठाउ गवायो, जो सुप्रसन्न पय प्रभ ठाकुर। सब आनंद रूप दिखायो, ना किश आवत ना किश जावत। सब खेल कियो हर रायो, कहो नानक अगम अगम है। ठाकुर भगत टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर।

मरे न लेखै पावे, वेस करै बहु भस्म लगावै, नाम विसार बोर पछतावै। तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख। रहाओ चुआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर। नाम विसारिया सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख्त सलाम। अदकी तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम। वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावे नाम सुहेला। दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट। बिन बोत सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे घाटे घाट। तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावै, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावै, तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावै। वाहो वाहो तिसको जिसका इहो जियो, गुर शब्दी माथे अमृत पियो। नाम वडाई तुद भाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए। आंदे गौड़ी मुहला पहला, होमे करत भेखी नहीं जानिया। गुरमुख भगत विरले मन मानिया, ओहो करत नहीं सच पाईऐ। होमे जाए तां परम पद पाईऐ, रहाओ होमे कर राजे बहुत हावे। होमे खपे जन्म मर आवै, होमे निवरे गुर शब्द विचार। चांचल मत त्यागै पंच संघार, अंतर साच सहज कर आवै। राजन जान परम गत पावै, सच करनी गुर परम चकावै। निरपौ कह कर ताड़ी लावै, ओहो क्या मरना क्या प्यावै। पूरा गुर भेटे सो झगर चुकावै, जेती है तेती को नाही। गुरम ज्ञान भेट गुण गाही, होमे बंधन बंद पवावै। नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी मुहला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया। ब्रह्म कमल पै आल ना पाया, आग्या नहीं लीने भरम भलाया। जो उपजे सो काल सिंघारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख अपेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो भूले जमका दुख सहना, मैं तर नाम जो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मकाम, शाह मरे संचे माया दाम। मैं धन दीजे हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिखदार। निहचल कोई ना दिसे संसार, अफरियो काल कूड़ सैर मार। निहचल एक सचा सच सोई, जिन कर सा जी तेने सब गोई। ओ गुरमुख जापे तां पत होय, काजी सेख भेख फकीरा। वडे कहावै होमे तन पीरा, काल ना छोड़े बिन सत गुर की तीरा। काल जाल जहवा अर नैणी, कानी काल सुने बिख बैणी। बिन शब्दे मूठे दिन रैणी, हिरदे साज वसे हर नाए। काल ना जोहे सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी मुहला पहला, बोले साज मिथ्या नहीं राई। चाले गुरमुख हुक्म रजाई, रह तीत सचे सरण आए। साच कर बैसै काल ना जोह, मनमुख आवत जावत दुख मोह। रहाओ अप्यो पियो कथ कथ रही है, निज कर बै सहज कर लही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल निचल नी डोलै। गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवे अमृत तत्व रोलै। सतगुर देख्या दीख्या लीनी, मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परमहंस सा ज्योत अपार, जय देखो ते एकंकार। रहे निरालम एका सच करणी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी। मन ते मन मानिया चूकी अंग भरमणी, इन बिद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत ने तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया। साच महल गुर लख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। सा संतोखे भरम चुकाया, जिनके मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी मुहला पहला, राम नाम जित रापै जाका। पजाम पदर्शन की जय ताका, राम ना जपो अभाग तुम्हारा। जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा। रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, तित घट अन हत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार। जिनके हिरदे हर हर सोई, तिनका दर्स परस सकोई। सर्ब जिया मैं एको रवै, मनमुख अहंकारी फिर जूनी पवै। सो बूझे जो सत गुर पाए, होमे मारे गुर शब्दे पाए। अर्ध अर्ध की संद क्यों जान, गुरमुख संद मिलै मन मन।
हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन तरिए। 16 अष्टपदियां गुवारे री गोड़ी किया, गोड़ी बैरागणा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो गाई को गोयली राखे कर सारा, एंस पाले राख ले आत्म सुख तारा, एते ओत राखो दीन दयाला, तो शरणागत नदर निहाला रहाओ, जय देखो तै राव रहे राख राखन हारा, तू दाता भुगता तू है तू प्राण आधारा, किरत पिया अद ऊरदी बिन ज्ञान विचारा, बिन उपमा जगदीश की बिन से ना अंधियारा, जग बिनसत हम देखिया लोभे अहंकारा, गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा, निज कर महल अपार को अपरांपर सोई, बिन शब्दे थिर को नहीं बूझे सुख होई, क्या ले आया ले जाए क्या फासे जम जाला, डोल बदा कस जेवरी आकाश पताला, गुरमत नाम ना विसर सहजे पात पाइये, अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाइये, नजर करे प्रभ अपने गुण अंक समावे, नानक मेल न चूकई लाहा सच पावे, गौड़ी महला पहला, गुर प्रसादी बूझ ले तो होए नवेरा, घर घर नाम निरंजना सो ठाकर मेरा, बिन गुर शब्द न छूटिए देखो विचारा, जेला कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ, अंधे अकली बाहरे क्या तिन सो कहिए, बिन गुर पंथ न सूझी कित बेद निर्बहिए, खोटे को खरा कह खरा खरे सार ना जाण, अंधे का ना उपार खू कली काल वडाण, सूते को जागत कह जागत को सूता, जीवत को मुआ कह मुए नहीं रोता, आवत को जाता कहे जाते को आया, पारकी को अपनी कह अपनों नहीं पाया,